व्यास जय हर हर हर रस नाम ना पाया ते पाघहीन तुम पास। जो सतगुर सरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई।

मोर अच्छा नच करता करिया, सब बैरन को आठ संगरिया। पूरन होए हमारी आशा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याऊं, जो पर चाहो सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारिया है, चुन चुन सतर हमारे मारिया है।

सकल प्रजाजन आपस वारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पल मोह बद कियो। कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते

सर्बठोर मोह हो सहाई, दोस्त दोख ते लेहो बचाई। कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता। किल बिख सकल देह को हरता, दोस्त दोखियन को छय करता।

प्रथम तरो भगवत को त्याना बहुर करो कपिता बदनाना कृष्ण जथा मचृतुर उचारो चूक होए कबले हो सुधारो कभियो बाचे दोहरा।

देस कोट इंद्र ब्रह्मा के तेर अब सस क्रूर जदेस दोहरा राम कथा जुग जुग अटल सब कोई पाखत नेत सुरक बास अकबर करा सगरी पुरी समेत चौपई जो यह कथा सुने और गावे दुख पाप तह निकट ना आवे बिस्न भगत की ए फल होई आद प्याद छुआ सके न कोई संबत सत्र है।

मुखकर संतन की पूरे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। उदया के

सांगो मान के बिन सा सगला परम कर पूजा सगल पार ब्रह्म सा संग पापा मार को वद सगल दुख मा दूत मुवे भगवंत की डहत कर अंगद नियत मान तन अर पा बसन प्रीत हर के चरण हरदा सब नानक भगवती भगवंत को पावे तू पंडित जो मन प्रबुदा राम नाम आत्मा सुता राम नाम सारदा जीवा पंडित का उदेश जाग जीव हर की कथा हरदा बसा सु पंडित फिर जो नावे वेद प्राण समृत पूजा मूल सुख मह जाना सुगर कह अपना को देव देश नानक पंडित कह सदा दिस बीज मंत्र सर को ज्ञान कह वरना मैं जापै को नाम जो जो जापै दुखिया तो सत्संग पावे जन कोई कर कृपा अंतर वरतारे बस प्रीत मुकुट पात्र का उतारे सर्व रूप नाम कल्याण रूप मंगल गुण गाय कैसे जुगत के दया नाम पाइया तर नान के मेले क्या दुर्कर्म जिसका मन पार ब्रह्म के नवाय तो के नाम सत राम दास आय तुम राम ते न दुया दा त संतन पाए कन पाया सदा निकट निकट हर जान सोदा दर्ग प्रवाह न प्रिंदा पाव कृपा करे तह दास तव सब सोजी पर सकल संगा तुम दास ऐसे जुगत नानक राम दास प्रभु की आज्ञा तुम हितावे जीवन मुक्त सोग कहावे तह सहर्ष तह सोग सदा आनंद तह नहि वियोग तह स्वर्ण तह सुख सुमाटी ऐसा अमृत तैसे बेखाट तह मंत मंत हरंग तह सारा जांग वरता साई जुगत नानक उपर कही आय जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगरे ठाऊ जेत जेत कार राखे तैसा तन नाव आप

भीर दय कृपाल कुट सब जा पाए न हर उन सेवा से गला आ जिस कृपा कर बड़ पग नाम जत पाव सराव नानक तन पुरख कौ तुम करमान जो किस कर सो प्राप्त करंग सदा सदा बस हर संग सहज सुभाई हुआ सु हरि करण अर्पण से प्रभु को किया जन वीर लगा न जय सा सा तह दृष्टा न जह दे उपजे देह माहि सुमाई वे सुख निदान उन्हों बन आई आप स्वभाव दिनो मान नानक प्रभु जन निपुजन श्लोक सर्व कला पार पूर प्रभु अर्थ जन नर जाके समरन उदरी है नानक देह बलहार पदि टूटी गण नार गोपाल सर्व जी आप व्रत पाल सकल कृपा जहन वाहि देह ते व्यर्थ पूजना हरि मन विद सदा हर जा बबना से प्रभा पिया बबन किया कृष्ण वे जी साव प्राणी रूचा कोई तेस बेन नाह तेरा किस काम कद नानक जापी घर नाम रूपवंत होय नाह वो है प्रभु जो सर्व घट सो है धनवंत होय क्या को करवे जन साहब के सत कह दिया दरबा तो सूरज को कहावे प्रभु करा बिना कहता वे जब हुए वह अदा तार देह दिन अर्जन

சாந்த கணக்காந்தர் மர்மாந்த ஈகாசராகி சர்வருகநாத் பண்டிதாஹிஜிஹான் பிரச்சார் குண்டுதாவ சூதான ஹரசிவாதி பாவ
जब इसका वर्ण जिहन न जाप तो तब हर सो कह कह व्याव जब अपना आप आपार बनता मुसा हर जो तो परमात्मा फिराव वर्तु जग नान करन हर न दूजे जब हो तो प्रभु की व्रत निता बांध मुक्त कह कह सो कन जावी कह हर गुम अपार तब नरक स्वर्ग कह कौन अवतार जब नरक सब सह सुबाई तब सब सकत कह सुपित ठहर जब आप है आप अपनी जो तर तब कौन निडर कम का डर अपन जल दाव करने या नान क्या कर कम उपार अवनाशी सुख अपना संत है जन्म मरण कह कह अवनाशन जब पूर्ण कर तब राव सुई तब जम गुजरा सु कह हो के सो हुई जब अब गत या गुजर प्रवी कह तब चित्रगुप्त किय सब पूछत लिख जमनाथ निरंजन आ गुजरा गत तब कौन छुटे कौन बंधन वादी अपना आप अभिषेक कर जा नानक अपन रूप अभिषेक पर जा जहन जरमल पुरख पुरख पात उता तह बिन मैल कह हु क्या तूता जहन निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन कमान का निर्गुण जह स्वरूप केवल जगदीश तह शाल शेदर लगत कह पीस जहन जो स्वरूप जो संग समाव तह सब कौन त्रवता कर्म कराव करने हार नान कर दिखा नह समार जब अपन संग बनाई तब कौन माए बाप मित्र सत पाई जन सर्व कला आप है परवीन तह वेद कतीब कह कुचिन जब अपन आप आप रतार तव सगन अब सगन कह विचार रह आप मूत अपना वीरा तह कौन ठाकुर कौन कही अचीर बिस्मन बिस्म रे बिस्म नानक अपनी जात जान भाव जहाँ शाले शेद अपेद समाया ऊहा के सब व्याव माया तो आप आदि सत्य हो गुण का नह प्रवीर जह एक है एक भगवंता तह कौन अचुंत कहला के चुनता जहाँ अपना आप आप दियर तह कौन कथ है कौन सुन ने आरा बहु बेअंत गुच्छ गुचा नानक उसको आप कह पाक गुचा जहाँ आप रचि प्रपंच आकार देह गुण मह चुन विस्तार पाप पुन तह पई कहा गुण अर्गो सर्वगुण छावत आल जान माया जन जाल हो मैं मूह परम पै पार दूत सूह मान अपमान प्रकार की उपख्यान अपन फिलाव कर दी कह कील संकोचा तो नानक कह जह अवगत भगत तह आप जह पसरा पास सार संत परता दुख कह कह आप है तनि उनके सुबह हूँ मनी आप है कौत करे अनल चुग जा पर पुग निर्जोग जह पावत अपन नाय लाव जह पावत कीर कराव भी सुमार था है गन ता तुले जू बुलाव क्यों नानक दा बोले सलोक जी जंत के ठाकुरा आप ही वरदन आतन की कृपा श्रेया दूजा कह दृष्टा दृष्टपति आप कहा सुनने हार आप ही काबिल सर जान दह पावत सर के उपाय अपना पाने ले सुमाई तुम ते बेंदा नह किसो आप सूत सब जग पूरे जाग प्रभु जी आप जय सजना सुजन पाई सु समदर्शिता कविता नाम सब श्रेष्ठ का जीवता जी जंत थवता कह दीन दयाल अनाथ पनाज सरा के दुख कोई न मारे सो मुआ जह मन हम सर तेहता जवर कह पुजाय सब से रही कर निरंजन राय जी की जुग जाग सब हाथ अंतर बह जान साथ

अंतर्गात गहाव जनाय नानक तेज जना बजाय सर्वभूता परतार सर्वनयना पीखनारा सकल सामग्री जाका तन अपन जसा सुनाया जा निकील बनाया गया कार्य की ने माया सब के माता लिव तो रह जो कुछ कहना सो आप ही कह आ गया वह आ गया जाय नान जाओ बाबा तारे समय से हुई सो ना बुरा बुरे कह हो के ना काश करा आ पता कर तू ता तुझी की आप जाने अपने जी की अवसा तू तारी सब सार जूत पोता अपने संग्राह ताकि गद में तुझे ना जाए दूसरो न सोची पाई उसका किया सा प्रवान गुर प्रसाद नानक की सुजान जो जाने ते सदा सुख हुआ आप मिलाए।

कुमुकुत मुदुत्कर संसार नानक दहिदन को सदा नमस्कार स्वरूप पूरा प्रभा राधे पूरा जाका नाम नानक पूरा पाया पूरी के गुण गावे पदि पूरे गुर प्रसन्न बुद्धि सो पार ब्रह्म निकट कर पी तो सा सा समर गोविंद मन अंतर ज्योत राज्य अंदर अनित त्याग तरंग संत जन के दूर मान मांगा छोड़ बिनती करहु साध संग गण सागर तरहु हर तन की परले हु भंडार नानक गुरुपुरी नमस्कार क्यों कुशल सहज आनंद सत संग पाए परम आनंद नरक निवार उदार हो जीव गुण गोविंद अमृत रह पियो चेत चेत वह नारायण की पूजा करंग रीत गोपाल धाम उदर दीन दयाल पुन पुन कृपाल समस्त नाम बारंगार नानक जी काय आधार उत्तम श्लोक सहज कृपा जनम री गलारी रतन सुन कुमार दूत धारा उतारा लोक हता सवर जीव सवता का समझा कमला गह रंग जय जय सवदाना हतवा जय सोन सुन अनंत करे प्रभु का जय प्रगट गोपाल महांत के मत नान कुदरतन का साथ सरण जोग संसरण आई कर कृपा प्रभा मिलाई मेट गए भय पर सब दिन नम्रत नाम साध संग लय सब प्रसन्न पाए गुरु जी पूर्ण होय सेवक की सेवा जंजाल विकार के रह राम नाम संरचना कह दी कर प्रसाद या अवतारी नानक देव ही के हमार प्रभु के उस्ताद कर शांत मीत सावधान एकाग पीर सुखुनि सहज गोविंद को नाम जिस मन बसा सोत न धान सर्वेच्छा ताग पूर्ण होय प्रदान पुरख भक्त सब लोग सब दुख पाए स्थान बहना हुआ अवजान हर तन खाट चले जन सुय नानक जिस प्राप्त हुई हिम शांत रेत नाम निध बोध ज्ञान सर्वतन सिद्ध वेद या तब योग प्राप्त ज्ञान ज्ञान स्त्री सूत में स्नान कार पदार्थ कल प्रकार सब के मत सकल देवदास सुंदर चतुर तत् कविता समुद्र सी एक दृष्टिता इह भाद तह जान कर मुख पने गुरु नानक नाम वचन मन सुने हो निधान जप मन को सब जोग महता गा तो गुण गोविंद नाम तुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी सकल मतांत कीवर हर नाम गोविंद भगत का मन विश्राम कोट अपराध साध संग मिटा संग कृपा दे जम दु छोटा जाक मस्तक कर्म प्रभा सा शरण नानक दी आई जिस मन बसा सुना लाय प्रीत तिस जान आवे हर प्रभु चीत जन मन ताक दुख निवार गुलाब दिख तत्काल उदहार निर्म

अजीता पीता बाहंगार अमान ताना एक फिर एक भुजंग प्रयासांत नमो सर्म।

रूप है, अनंत के नाम में तेरे पंगे तेरे काम तेरे पर कृपा दिए कचेगा तू सर्व भागे सो सर्व अनुराग तेरे भुख स्वरूप है आस जय सूत है कि नरक प्रणास है पृथ्वी प्रवास है निरकुल प्रभ है सदैव सदा तेरे भुख स्वरूप है पर जुगत अनूप है

महादेव को कह सदास निरंकार का चिंतने पे हो आप अपनी को दह देती वर्ण भिन्न भिन्न दुख देती तुमरा लखना दे प्रसार ये सजा प्रथम संसार एक रूप अनूप रूपा रंग प्योरा रूपा अंडज जेर सिद्ध कीनी उस बुझ खान बहुत दीनी अहू कूल राजा है बैठा अहू सुंडो शंकर कैठा सगरी सिद्ध काया काम पाव आ चुका सुभव अब रचा मेरी तुम कराओ इको बार सुसंग्राओ दुष्ट ते उठो तो पाता सकल मिले करोड़ का ता यह तो कसर नहीं परे इनके इनके दुख दुख तैमारी पुरख जीवन को करे तहार इनके तो शंकर से उठार जो काल को बात हैं ताकि काल हैं रशायतन सुकाला दोस्त अरेस्ट ट्रे तात काला कृपा दृष्टि दयन हारो ताकि दात नितिन हारो रेत सिद्ध कारण हो

मूर्ताय पुत्रताय आवाय दुख दर्द को निकुंत नरक ही रहे वो जो जाग के एक बार जो भाई को कहे जो भाई संभव सूर्य साहब निजय आर्थ साहब निजय पाग श्री अश्मी रुवार तीस अब तक ग्रंथ का रस होया पाएंगे है जब ते तुमरे तब ते को आग्रह नहीं आने राम दिन प्राण प्राण देख कह मा देख न मान

छह साच रह सबको ससमा वैर कह रहा प्रभु राम नाम देवा मैं सूर नाय लै प्राशत जाय नानक तौ मुखंतर पाए। जुज मैं जोर शली चंद्रावल कान कृष्ण जादम भया पार जात गोपी लै आया बिंद्रा बन में रंग किया कल में बेद अथर बन हुआ नाम खुदाई अलहो भया।

अंतर पूजा पड़े कते बा संयम तुरका पाई छोड़ी ले पाखंडा नाम ले जाहि तरंद।